0: इट्स ओके यो गीत चाहिँ अब आउँदैछ
1: मन में ए नीलाई हैन ए तुलसी चाहिँ कसम म सिक्दै छु पूर्वेली हैन क्षमा चाहन्छु मेरो टोन ठ्याक्कै पूर्वेली जान्दैन दोहोरी चाहिँ गाउनै पर्यो हैन

0: गीत में मात्र हो
1: गांव में भंसन मिलन ले लाई सक्यो
0: अच्छा वही ना रे
1: गांव में भंसन मिलन ले लाई सक्यो मिलन ले लाई सक्यो इस्ते भाने चार वर्षा भाई सको अब त बिर्से छ मलाई सटिने मिलनले लैसक्यो मिलनले लैसक्यो

0: लगन को साइत निकलेर जाला बारी को भत्तेर भांचे लेखाला है।
1: ए, वजन है।